सहज समावन संग रहाओ, जन के चरण वसह में रही अरय, संग पुनीता देही जन की तूर दह कृपा निध, नानक कै सुख एही, जन के चरण वसह में रही अरय।

मानस जतन करत बह पात तिसके करत व्यर्थ जात मार न रखन को सर्वजिया कर खस कह सोच कर हिर प्राणी जपनान प्रबला खुबाणी बारंबार बार प्रभ जपे पी अमृत हिमा तंत्र पिया नाम रतन जिन गुरु मुख पाया ते स केशवर ना ही दृष्टाय नाम तान नाम रूप रंग नाम सुख नाम कसंग नाम राह जो जान तृपताने मान तन नाम है नाम समान उठत बैठ सोत नाम कह नानक जानक सदका बोला।

नानक तुम स्थान पुरुष भगवान सर्वैकुंठ मुक्त मोह पाई निम हर के गुण गाई अनक राज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई व भोजन का प्रसंगीत रसना जापती हर हनीत पली सुकर्ण शुभ तनवंत हृदय बस पूर्ण गुरमंसा संग प्रवधि हो निवास सर्व सुख नायक प्रगास लोक सरगुण निर्गुण रंकार सुन समाधिया पापन किया नानका भी फिर जा बृहस्पति जब अकार हुकाशना दृष्टि तब आपन तब कहती होते जब तारी आपन सुन समात अब वैर विरोध केश संकुमात जाब इसका वर्ण चिहन न जाब तु तब हर शोक कह किस व्यावत जब अपन आप पार ब्रह्म तमूह कह किस परमापन खीरा वर तीजा नान करने आना दूजा जब होत प्राव की व्रत निता बंद मुक्त कह किसको गानी जावी कह रगम अपार तव नर्क स्वर्ग कहु कौन अवतार जब निर्गुण प्रसाय सुबाई तव शिव सकत कहु कित ठाय जब आप है आप अब जो तरह तव कौन निडर कौन का डर आपन चलताव करने यार नानक ठाक रगम अपार अविनाशी सुखापनासन तह जनम मरण कहु कहा विनाशन जाओ पूर्ण करता प्राव सोई तब जम पित्रास कहु कि सोई जाव अवगत या गोचर प्रावि कताव चित्रगुप्त के सब पूछत लिख जाओ नाथ निरंजन अगोचर अगादि तब कौन छुटे कौन बंधन वैद्य अपना बाब ही अचर जा नानक अपन रूप आब ही अपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पात होता तह बिन मैल कहु क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अवमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शेदर लगत कह की स जह जो स्वरूप जो संग समाव तह किस भूख कौन द्रवता कर्म क्रावन करने अनान कर दिका नह सुमार जब अपने स्वभाव संग बनाई तब कवन माय बा मित्र सुत पाई जह सर्व कला आप है प्रवीण तह वेद कतिब कह कुचीन जब अपन आप आवर तार तब सगन अवसगन कह विचार जह अपन ऊचा अपना नीरा तह कौन ठाकुर कौन कह अचीरा बिस्मन बिस्म रह बिस्म नानक अपनी गात जान हो आप जह अशाल अशेद अभेद सुमाया ऊहा के सब व्यावत माया उसको आप आदिश तेहु गुण का नाह प्रवेश जह एक एक भगवंता तह कौन चिंता कहलाका चिंता जह अपन आप आपति कौन कथा कौन सुन हर

प्रकार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की उपखियान आपन की लाभ कर दी खीर संकोचा तव नानकी का जह अवगत पगत तह आप जह पसरा पास सार संत प्रताप दोह पह का आप है तनि उनकी सोवा नुह बनी आप है कौत कर अन जो जा पर भोग निर्जोग जह पावत अपनाए लाभ जह पावत खेल खिलावह

ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ति संत भेटिया नानक मन प्रकाश अष्टपदी संत संग अंतर प्रभु डीठा नाम प्रभु कैला कह मीठा सगल समिग्री एक कटमाय हन करंग नाना दृष्टाय नाव निध अमृत प्रभु का नाम देह मैं सक विश्राम सोन समाद अनहत तहनाद कहन जय अचरज विस्मार दिंदी कैज साहब दिखाय नानक दृष्टां सोजी पाय सो अंतर सो बाहर अनंत काट काट व्याव रह भगवंत तरन वाहि आकाश उपायाल सर्वरूप पूर्ण प्रातपाल प्रवान तेन पर्वत है उपार ब्रह्म जय सी आज्ञा तस करम पावन पाणी वै संतर माहि चार कुंट दह दिशे समाहि तेह तिपिन नहि कोठाय गुरु प्रसाद अनु सुख पाय वेद प्राण सिमरत मंदिर शशि हर सूर नख यात्र महि बाणी प्रभु की सब को बोले आब अडूर न कहु डोले सर्व कलाकार खेल खेल अमूर न पाइया गुण है अमूर सर्व ज्योत में जा की ज्योत तार रहियो स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद परम का नाथ नानु तिन मैं हो विसार संत जन का बीखन सब ब्रह्म संत जन का हृदय सब धर्म संत जन सुन सब वचन संत जन सुन सब वचन सर्वव्यापी राम संग रचन जिन जाता दुख रहत सात वचन साधु सब कहत जो जो होय सोई सुख मान करन कराव नार प्रभ जाय अंतर बस बाहर पियो नानक दर्शन दिशा मोह आप सात किया सब सात प्रभ दे सगरी उत्पात

उत्तम श्लोक साधु वचनावली कलालिहि रतन सनत कुमार उद्भूत उदार अवतर लोकहन स्तार सफल ज्यों सफलता का संग जा कमल लाग हर रंग जय जय शब्द अनाहत वा जय सोन सोन आनंद करी प्रभु का जय प्रगटि गोपाल महांत कह मथि नन कुदरी तिन कह साथ शरण योग संसरण आय कर कृपा प्रभा मिलाई मिट गए बैर पय सबरी अनमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पय गुरदीव पूर्ण होय सेवक सेवाल जंजाल विकारती रहत राम नाम सुन रसना कहती कर प्रसाद दया प्रभु तारी नानक नेब ही खेप हमारी प्रभु की उस्तत करूँ।

भूतें अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आशे नमो भंग भंके अभंगे स्वरूपे अनंगीय नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगीय कामे एक अक्षरी छंदम

विभूते समस्व स्वरूप कर्मं प्रणाशे सुधर्मं विभूते सदा सचदानंद सुधर्म प्रणाशी ग्रीम कुनिंदा समस्व निवासी अजाहेब विभूते गजायब गिनी में हरियं करियं करी मुल रही में चतर जगर वर्ती चतर जगर भुगते स्वयं।

संतीन के हिज्जा पाद्र सुधि अष्टमी रववारा तीर्थद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कोहू आंकतरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सबै

तीर्थ ना वैरचा पूजा अगरबास बहकार, जोगी सुन ध्यान जेते अलख नाम करतार, सुख मूर्त नाम निरंजन काया का आकार, सत्य मन संतोख।